0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्याडू वगुता हालताय को लोब इम्तिहान कुरेवे मिदुनियेगा दरिफुल देखे इंतिहाय लोब वा बप्पे दुनिये आबाद कुरुं हुट्टाली ए दरिफुलुगे दुनिये फुरिहम को दिनु मट्टका रिपीट हमेरे दिहगट तिरी हूँ आदि हुकुर दुहगिरे मेंदम बार गट तिरी हूँ एंग आसतर स्टेक सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि अध्यनुए मिग हर्ट्स एफएम बैंड
3: दिवे राज से गयाड
4: गाड़ीं एगार गड़ी सालिस फस मिनट मी दिवे राज से गयाड दिवे राज से गाड़ूं देम्मी दन्न वाले नी सारुकार गई उलाना देन्ने वों आदि अमिल फरायत होके देन्ने वों ता फुर्ता मी दन्न वाले नी सरकार के उलाना देने वंता अलिफ अलिफ मातिवेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट अलिफ अलिफ मातिवेरी दिवहिराज नंबर आईयूएल हस्ते का दे ओब्लिक देहासाबिस ओब्लिक सुमिंग हतरे कोटंग हाजिर हुमंग इंगुं रामाडुवरी स्टारलाइट आयशत नशाया की मी कोटंग हुशे अली बालमुंगेंदा नंबर सुमिंग हते यू फहेसी देहासाबिस गजिया गुड़गें मिकोट हाजिर कुरुम बेणु वे हाजिर फानुआ फरात के वीमा देहासाबिस जुलाई तेवी स्वर्ण दोहोगे एगार गड़ी सुमिनट अलिफ अलिफ मतिवेरी मेजिस्ट्रेट कोट हाजिरुम रामाडुवरी स्टारलाइट आयशत नशाया अंगमे आदि मिदेन्नवे तारीहा गड़िया रामाडुवरी स्टारलाइट आयशत नशाया मिकोट हाजिर नुएजनम नुअत एह तारीहा गड़िया वीडियो कॉन्फ्रेंस मेदेरिको शरियतुगा बैवेरे फानुआनम कोटंग हाजिरुम एंगुनी कम बला रामाडुवरी स्टारलाइट आयशत नशायागे कैरु हाजिरुगा मसल हिंगा निम्मानी कमवेस अंगमे फहे सफर सालस्तेक सालस अशे नवार जुलाई देहासाबिस देमी दन्न वालनी अमिल फरायत होके देन्ने मुंता अलगणगे कोक्को काफ हिम्मफुशी आगदगे हुसैन मूसा वणी देहासाबिस जुलाई सादागणिया एफे वीमा हुसैन मूसा के मच्छंगे विस्तारण्य नुवत वसियते वाणमा एमस्तोग तेरे अलगोंडा गुळुवा एक निम्मे वुंगदेमे आयलागे फरातुं हुसैन सोला फोन नुए नुए नुए हतरें हाय हतरे दे अलगोंड मेंगे लोबोती मम्मा अलिफ अलिफ फेरिदू दिलासागे खदीजा अब्दुल्लो दोंकाय दवणी देहासाबिस जुलाई सोला गणिया एफे वीमा मम्मा के मच्चंग विस्तरण येनोत वसियते वाणमा एमस्तोग तेरे गालगोन मेन्ना गुळुवा एक निम्मे वुंगेदेमे आयलागे फरातुं आयशत इब्राहिम फोन हतेन नुएदे नुएदे नुएतिने फातिमत नाहिदा फोन हतेदे हाय नुए नुए फाय फाय मोहम्मद तौफीक फोन हते फहें अशे एकें एके दे सुमे जमीला इब्राहिम फोन हतें हतरें हते हतरें हाय सुमे दे अलगन में लोबवती बाप्पा अलिफ अली फेरिदू शादी विला फारूक अली वणी देहा सब्बीस जुलाई सतारा गणिया फे वीमा बाप्पा के मच्चंग विस्तारण्य नुअत वसियते वाणमा एमस्तोग तेरे अलगन में ना गुड़ुवा एक निम्मे वुंगेदमे आ इलागे फरातुं मुहम्मद फयाज फोन हतें हतें एके आशे सुमे तीने फहे हसन फयाज फोन हतें नुए तीने आशे सुमे हते सुमे अहमद फयाज फोन नुए फहें एके नुए नुए हतें एके आयशत सादिया फोन हतें अशें हाय हतरे फहे फहे नुए देमे मी दन्न वाली सारुकार गी उलान तका देन्ने मुंता आदि अमिंद फरत होगे देन्ने मुंता गाड़ीं एगार गड़ी सालस अमिनट मी दिवे ही राज्य गाड़ू
0: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
5: ರಾಜೇಗೆ ಉತುರ ದೇಖುನು
0: ಖಬರ ಮೌಲು ಮಾತು
5: ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
0: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
5: ಎಂಗಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 98 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ FM ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में क्या दक काफ़ून अता
2: मुन्ना थी है बुरा को वेड़ना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: थी को तुम हाउ दा ही रंगल लाए थी हैं मुन्ना एक ही आह हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: अधियन अधियन की ने विफति हो रही
1: मेरी वर बड़ा हास वे
0: अनेक काठे स्टु क्या रवि मता मन्हा मन्हा हाद देरा विफये
1: आहने के वर क्या कुछ है आहने न माला में कुरने
0: हास नो एब स्पिल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंहालो हो दने गे ना
1: स्पिल द टी
0: Mikhail kankan dimawi mak kantak kura bidan gue tang. E program unge gane.
1: Spill the tea. Hame kani divehra jagadu.
2: Aditya dua hoga haviro. Hatur gad fanaraga.
3: Repeat. Budu dua hoga haviro. Hatur gad fanaraga.
2: Adi budaspati dua hoga haviro. Fahed zahado.
0: Engha satar steka salis 9 kilohertz medium wave. अधे अड्डियाँ नोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड हमें कन दिवही राज्य ग्यारों इंतजार कर लवा
4: स्पिल द टी

0: हंग हार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मिंदम बार गड़ तिरी हूं
0: हंग हार हमें कनी दिवे राज्य चाडू
2: रक्का को फोन न फैसा है जकायत देख कुमाजी बुआने था
3: हज़ा दियो मट्ट का दक्का फोन न फैसा है जकायत देख क्या ने था
2: आतुगो हूँ न गहना है जकायत दक्का ने की ही ने
4: तिहुरिया स्वागत है के जवाब ए प्रोग्राम को
0: जकाय
5: होम अधोगे हैं दोनों दिह कट तेरी हूँ रिपीट होम अधोगे रे दिह जायरो आदि होने ही रुधोगे में दोरो एके जायरो
6: इंगां सतरस्तिया का साढ़े स्नूए किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड हमारे कनी दिवे राज्य करो
7: मैं हफ्ता के प्रोग्राम के मेहमान की स्टेट फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शाह माहिर डॉक्टर शाह माहिर वास्वाल कुरवं बेनफुलवा बेफुलुं सुवाल फोनोवानी पीएसएम ए आमे दुरेको सुवाल फोनोव मुगे फुरसत बुधदुगे हावीर हतरे जेहुमा हमेया
8: आहाशे बुनाना
9: मुनिफुई फिलवादी मालूमात के खजाना मुसले को दे एम में तो बार कुरवे बैवरिया
10: ये हिराज्य के अड़ू
9: इंहा सातरस्तेक सालस नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड़िहनोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: मिनी मंदोह के खास प्रोग्राम तो के तेरे
1: दिव्य राज्य के मिनिमम कम की तारीख
2: इंग्रेसिंग ऐतिहासिक हिमायत वे राज्य मिनिमम कंदीपुनो में तारीखी एग्रीमेंट का सोय करें बुनी नवार से ते का फर्स्ट रस फर्स्ट पर नाहरोगे जुलाई माह के सब बीस पर
0: दिव्य हिंग मिनिमम कंग मान पुरा

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहर में बहा सकाफता आद का दायक तेरेगा आद बावर घंटे तक हुरे अडवाहा लंबे नंता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिव्यराज्य का ट्यून कोला अंगार दो घावीर फाहिज जहर बुरास दो घावीर हाथरोगड़ फनराग आदि आदित दो घावीर फाहिज जहर हमें कने दिव्यराज्य के आड़ों

0: मेहर गडिंग नुआ गडी फंसा सतर में तीन सेकंड में ते राज्य गाड़ो मेहर साबन राज्य के मौसम को रेला फाकुरा को तब बदला लाना आम गोते का मौसम रंगलवाने हदे वैज्य है ने होलंग देखुनो गड़े को तीन मेला तेर मेला दिमित के बार में नुका खांडो तंग आधे वर का मड़वाने अर्गन मेंगे प्रोग्राम तंग हम जेफा गोतों देंग दिहे चार गेनिस्तेनी जकाय में प्रोग्राम एफा हो दिहे गड़ी बैग का फिनिमेजम प्रोग्राम गेनिस्तेना देंग अर्गन में एकार जार स्टूडियो में वगतों कुरिये केंदाने मेरे ख्याल दी बला प्रोग्राम कुरिये दा गड़ी गा यहां तेरिना बैरों के फुरसे तोड़नाने कुलवानी तिने तिने हतरे सुमें है मिनं बला मैं प्रोग्राम फो बार जा रोगन में खबर गड़ी प्रोग्राम के निस्ते ना अधे सेफार कुरियंग में प्रोग्राम दन्नो आदा ना मैं को तुम दिहे जा रोगन में के निस्ते ने जाके मैं प्रोग्राम
1: दिवहींगे अमिल लवंत कंग कुरियरो है दे
2: दिवहींगे उफेदुन तेरी कंग तक्वा दे
1: दिवहींगे माजी के मंजर ता सिफ़ाकोद दे
2: दिवहींगे अडू
1: दिवहिराज्येगे अडू
2: एंहा सतरस्ते का साल इस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
1: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: राज्य के कोम हिसाबे के होरी केम्बस एबस आगे देखो मकानुला पीएसएम के चैनल तक फोन उंगाडू हाला बलालुम फसे हगोते
4: पीएसएम एयर
5: दिवेराज्य के अडा दीनु के अडू अदि दिवे एफएम विस अडू हाल वेने
3: टीवीएम यस टीवी अदि पीएसएम न्यूज़स बलाले
4: पीएसएम एयर
5: आईओएस अदि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करवेने
3: पीएसएम एयर
5: आवहा फोन डाउनलोड करवा
6: हिमाबिह जेहिफा वामी हकु केसा के बिहेळुम वागेतरे वायरस फेतुरे गेंदियुम हिमाबिह फेतुरे बंदो तने गानम देगाडी रेन हायरु वंदें वागेतरे का वायरस होरे
7: वायरस के असर होरि तने ग अलुम फ लोला नेफता आंगागा अलुम हिमाबिह फेतुरे
8: बय्या देकोला दिफा इबार नेम्मी हुं आदि मीसल्स वैक्सीन के दे डोज फुरी हम कोफा नुवा फरातका बाली जेहुमगे फुरसत बडु
9: हिमाबिहिगे आलामाते फेनिजनमा लसनु करबा सिही फरवा होदबा